0: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर बिनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप

के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Haka program kirwai pereng, dia usniau ya kituki artli kirwai. Dia ipteni kini ka program yang ini dia open temanaj pi sa irwai, iwe ipetun. Ring of Fire. Ring of Fire irwai yang Johnny Cash, pun bot sa irwai wa ar, always on my mind yang Willie Nelson. Dani abi ya kini ki artli kirwai.
1: Hello, listeners. Thanks for being with us. Now, join us in our effort to serve you better. Become an honorary mentor with RAISE, Radio Audience Interactive Survey and Evaluation, our exclusive mobile app where you can rate announcers, review programs, and share your feedback. Just click the link on our official Facebook page and register. Your active feedback will help us improve and keep up the legacy of Akashvani. So, don't just listen, lead the change with RAISE mobile app.
2: Namaste Shrotao, hamare saath bane rehne ke liye dhanyawad. अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
3: Kublishibuna ab radio emlang piwi bisnok tilang piwi he perchang yong e wo chakri phi rabha yipiman ki honorary mentor delang wo grace ne research audience interactive survey and evaluation lingba ni go mobile apps yong e yipui jingmon heyto wa irukom e program ki announcer kamjule isyang su wi min toy yong ki program yipule ye ni dei wo khnyan phi ha ka link na facebook ne te register ejimud yong phi yurap ko yi open ba we wo ra ye na mo ba ka akashwani kamte hamando kam gi nong ap hidan hanrei ya khamat he wo wan ra yi kala chirup bok race mobile app

fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet.

0: Hag a program kir wai pereng di sinya wi tu ki artli kir wai da yup ten jo jo uniga program yong ire open temnach phi sa ya ki artli kir wai ki ir wai ve ipo tuin the river unbroken yong u Dolly Parton from both say wai ar paradise road then ya bi yekini ki artli kir wai
1: सॉल्ट फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: you feel.
1: Hello, listeners. Thanks for being with us. Now, join us in our effort to serve you better. Become an honorary mentor with RAISE, Radio Audience Interactive Survey and Evaluation, our exclusive mobile app where you can rate announcers, review programs, and share your feedback. Just click the link on our official Facebook page and register. Your active feedback will help us improve and keep up the legacy of Akashvani. So, don't just listen, lead the change with RAISE mobile app.
2: नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े RAISE रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, RAISE मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
3: मानी है तो हानी है दिव्यांग पौरपंग को ना ये या का प्रोग्राम करवाएं फिल्म हिंदी प्रोग्राम करवाएं छपी न का आकाशवाणी जो आए तो प्रलोभ रोय पौर जन दाबी प्रावचे है वे दिव्यांग पौर विसो ना ये वो आकाशवाणी डल ही ने बंटा का खूब बहुत है किन हिंदी है पौर प्रकाशा मिनट ने का जोक स्टेशन ना यो ये का खूब बहुत है किन परेंग ना विच मानी है पौर प्राले पाव मिनट ना विसो ये वो आकाशवाणी शिलोंग ने बंटा का नॉर्थ ईस्ट न्यूज है किन परेंग ना विच मानी है पौर प्रासो पाव मिनट ने बंटा के प्रोग्राम के बदांसा आप ये खूब बोर के वो बोर के नहीं तो आकाशवाणी जो आई।

0: भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्रप्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1 करोड़ 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।

0: पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को

0: 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लोव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says principle

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
3: आरबीआई कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: यो बांगी नी मिठाई
1: उबामो समन समन
2: ओए पा उनी मिठाई यों ना थान मा तो यों पी हापन दुना पी बान थियंग
0: मे हम बताई हावा क्वा इम सेन ओ उबामे ओ तंग वो बांगी के तेन पर
2: ओ बांग बांग स्ते पा मने यो एक जोट वन दाव सजा उ यो एक कोई किया उपुरा पंदुना ई क्लें इब्लो वक्चिनी ने यूं मुश्दांग इचारी तू यों ई यो क्वा जू किया मन रेड मन गुई
0: ने भा उपाज बा

0: जोधन लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: वाह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में कौंध गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा ही देगा।

अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को आपने एनएसडी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहां आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पाराशर, मदनपुरी और ओम शिव पुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे 3 सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया है।

सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होके बी.आर. चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने अभिनय किया।

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास के, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीनो रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

फिल्मों में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था, वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसकी सफलता राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। मां ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने एक नेगेटिव किरदार निभाया।

राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलकें। जन्म

किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद NSD से थे। आप स्वयं पंजाबी कलामंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और NSD से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने NSD में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलका जी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। NSD करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप NSD की रिपर्टरी का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रिपर्टरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारुन जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ।

फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सुहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहां भी उम्मीद दगा दे गई पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए जिसमें जितेंद्र, रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्म योद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज़ बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है जिनमें हम पांच, कलयुग, राज और पूनम है।

ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी

इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेम साहब, बरसात और याराना में भी राजबब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविजन पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया, 1988 में महाभारत

हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर आपने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया है। आप अपनी कला से सेल्यूलाइट पर हमेशा चमकते रहेंगे।

0: आपने सुना आज का आज के फनकार, जो कि राज बब्बर पर केंद्रित था। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुति थी रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए, आपसे बात करने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
1: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफ़ी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बड़े स्टूडियोज़ हैं, फिर सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा।
0: जी, आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं?
1: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूँगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है।
0: अच्छा।
1: अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में, जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं,
0: जी
1: उनमें अबाउट 30 से 40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गाँवों में चले जाएँ, छोटे शहरों में चले जाएँ, तो ये बीमारी थोड़ी कम है, और
0: जी
1: इसके कारण भी मैं आपको बताऊँगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज़्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना ज़रूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज़्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर ख़राब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5%, मतलब 5% से ज़्यादा हो जाए, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है।
0: जी, तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
1: सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफ़ी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज़्यादा हो, तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को ख़राब करता है। डायबिटीज़ होना, प्री डायबिटीज़ होना,
0: जी
1: एक्सरसाइज नहीं करना,
0: जी
1: आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है,
0: जी
1: सबके वज़न बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज़्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुँच
0: नुकसान
1: सकता
0: पहुंचता
1: है।
0: है। तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
1: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये
0: जी
1: प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ, तब काफ़ी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक ख़राब हो चुका
0: ओ
1: होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़ें तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं,
0: लक्षण
1: लक्षण
0: हाँ
1: क्या
0: क्या
1: होते हैं।
0: है
1: तो
0: और
1: नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें, उसमें हमको डायबिटीज़ हो सकती है या प्री डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये दो तीन लक्षण हैं जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वज़न बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं,
0: जी
1: सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
0: जी तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
1: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वज़न कितना है। अगर वज़न हमारा बढ़ रहा है या ज़्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पर डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज़्यादा हो तो देर इज़ अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है। अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी ज़िंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, पूरी ज़िंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसान दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है,

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने, आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका

0: दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है।
1: जी
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफ़ी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में,
1: जी
0: तो एक एमआरआई करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल सीटी स्कैन भी अवेलेबल है।
1: जी
0: अब ये सारे जो टेस्ट हैं सिंपल टेस्ट हैं, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। बट यू नो, मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं
1: जी
0: कि
1: जी जी
0: 2 मिनट के
1: बिल्कुल
0: अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूँ कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज़ टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं।
1: जी
0: अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खास तौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफ़ी साल,
1: जी
0: चौदह
1: जी
0: पंद्रह साल मैंने वहाँ बिताया,
1: अच्छा
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS
1: हाँ
0: की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफ़ी काफ़ी
1: जी
0: साल। फिर
1: जी
0: 14 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे
1: जी
0: पेरेंट्स यहाँ थे।
1: जी जी
0: तो वहाँ मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है
0: ये जो
1: मेरा,
0: देश है मेरा, ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद
1: क्या
0: है।
1: बात है। सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की, हमने वहाँ पे तीन तीन
0: जी
1: साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है
0: जी
1: हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू इट, तो मैंने 1 साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं
0: जी
1: हम,
0: जी
1: एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड
0: जी जी
1: ERCP करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स
0: जी
1: पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे
0: जी
1: पढ़ने को,
0: जी
1: फिर
0: जी
1: 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया
0: अरे
1: वापस।
0: क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है, हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है, ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें।
0: जी
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वज़न कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया, तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक
0: जी
1: गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाइयाँ, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयाँ अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, फिर कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज़्यादा दवाई हम यूज़ करते हैं इसके लिए, वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो
0: जी
1: आजकल
0: जी
1: काफ़ी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयाँ, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसन्स होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है।
0: ओ
1: तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो। अगर वे वज़न नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, तो बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी,
0: जी
1: उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, चौदह
0: जी
1: घंटे
0: पढ़ाई
1: काम
0: कर
1: कर रहे
0: रहे
1: हैं,
0: हैं उनको।
1: स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूँ, बैठे रहेंगे, वज़न बढ़ेगा,
0: जी जी
1: एंड फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है,
0: जंक फूड।
1: जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, उस सब से भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम

0: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म. तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर. एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम. फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है. तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है.
1: जी जी तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है. तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा. तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल. अगर 100 पेशेंट्स को लें, आप 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा. ये बहुत बड़ा नंबर है. आई मीन ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ. अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर. बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है. एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है. तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा.
1: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को.
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ. थोड़ी बीट सुननी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना.
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है.
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है. सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए.

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फिटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही हैं। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है, जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी है, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है या क्या
1: हाँ,
0: है?
1: ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है
0: जी
1: उनका हम अगर डायबिटीज़ का चेकअप करें तो काफ़ी लोगों को प्री डायबिटीज़ होता है,
0: जी जी
1: मतलब डायबिटीज़ शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7 5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6 5.7 है, आपको प्री डायबिटीज़ है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज़ शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विथ कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज, फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल के जो डायबिटीज के दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है। सो इट वर्क बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए
1: ना,
0: पहले?
1: अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी पुअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है।

0: प्रोटीन बहुत कम है, तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं, तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें, तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है, अगर आपको अपने बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप
1: ओके
0: खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और
1: जी
0: थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए हफ्ते में 2 दिन, थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
1: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा
0: हाँ,
1: बताइए।
0: ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके
1: जी
0: दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी
1: जी
0: लिवर होता है,
1: जी
0: और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे, 70 to 80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10 से 15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम, इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे
1: बिल्कुल
0: आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डायटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं, ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा मुझे, किसी ने लिखा मेरी बहन को है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है, तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूं तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है।

0: या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज़्यादा लो, फल फ्रूट ज़्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
1: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
0: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी को अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है,
0: जी
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद

0: ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है, तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी
1: ऊपर
0: वापस खाने के पाइप में आ गया है।
1: जी, तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
0: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, सबसे इंपॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए, खाने के बाद टहलिए थोड़ा 10-15 मिनट ताकि खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज़ कहूँगा, जो चीज़ आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज़्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज़ आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
0: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं लेते
1: लेते
0: रहते
1: रहते
0: हैं।
1: हैं।
0: हाँ, लेते रहते हैं, बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स
1: जी
0: को,
1: जी
0: जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
1: जी
0: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जाँच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है।
1: ओके
0: इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं।
1: जी
0: बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे आईबीएस बोला मैंने पहले, सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा
0: ऑफकोर्स
1: देने से
0: इसकी
1: पहले?
0: दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से ही शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती हैं, जैसे एक एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलिएक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हैं, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा।
1: दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और
0: करेक्ट।
1: वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी हैं। है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे अपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा ज़रूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि एक बार आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी।
1: सो दैट इज़ कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज़ प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत न डालने, ये गड़बड़
1: करेक्ट।
0: है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: हाँ, अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम
0: जी
1: क्या है।
0: जी
1: इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो
0: जी
1: डायबिटीज़ पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है, लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा
1: बिल्कुल।
0: करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला गीत। आवाज नरेंद्र चंचल की थी, फिल्म का नाम था बॉबी। इस गीत को लिखा था राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई का भजन। इसे संगीत में ढाला है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और रचना संत मीराबाई की थी,
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं एक शास्त्रीय रचना। आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये कजरी।

0: बेगम अख्तर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये कजरी। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी बाबू गव्वाल की आवाज में ये गव्वाली। इसे लिखा है सबा अफगानी ने।
4: ये हुस्न वाले भी कैसा

0: जानी बाबू कव्वाल और उनके हमनवा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में फिल्म साथ साथ की ये गजल। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और धुन बनाई है कुलदीप सिंह ने।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

अभी आप सुन रहे थे शंकर शंभू कव्वाल की आवाज में आमिर खुसरो की ये रचना। और ये आवाज है विशाल मिश्रा की, आप सुन रहे हैं इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिव्या कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में ये पारंपरिक गीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी मांड।

केसरिया बालम पधारो मारे देश, राजस्थान की जबान है ये। केसरिया महबूब से मुखातिब है।

सूरज से मैंने समाज होने के सूरज तुम्हें मैं पूजूंगी, घर मोतीरारो थाल, ये मोतियों का थाल भर के मैं पूजूंगी। किस लिए?

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवन और उनकी योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑफ ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में

0: जल उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में, यानी यादों की महफिल कार्यक्रम में, हमने राज बब्बर की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। ये है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है निकाह। आवाजें महेंद्र कपूर और सलमा आगा की। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और धुन बनाई है रवि ने।

महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में अभी आपने फिल्म निकाह का ये गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम याराना, गीत रचना रानी मलिक की और धुन अनु मलिक की है।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी और फिल्म का नाम था याराना।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, युगल स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल के, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत, फिल्म का नाम है वारिस और गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

रविंद्र जैन का संगीत साहिर लुधियानवी के बोल हैं, आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाजी। फिल्म का नाम इंसाफ का तराजू।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: महेंद्र कपूर की आवाज, फिल्म का नाम आज की आवाज, गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि।

0: वाह प्रभात वाह, बहुत रवि तालियां उनके लिए,
1: मजा आ गया, कमाल कर दिया, थैंक यू।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनिए निदा फाजली की रचना, मनहर उदास की आवाज, उषा खन्ना का संगीत और फिल्म का नाम आप तो ऐसे ना थे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: super.
1: जुगल किशोर तिलक राज की संगीत निर्देशन में लीजिए हम आपको सुनवाते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। ये फिल्म है भीगी पलकें।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं दोस्तों, आपके शहर में बारिश हुई या नहीं, या अभी भी आप धूप में बहुत परेशान हैं? बताइए आपके शहर में चिलचिलाती धूप है या फिर हल्की फुल्की बूंदे। लेकिन हमारे कार्यक्रम में आज हल्की फुल्की बारिश है और साथ में है प्यारी सी हमारी छतरी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में छतरी केवल धूप या बारिश से बचने का साधन नहीं होती है ना, बल्कि ये धैर्य, सुरक्षा और दूरदर्शिता का एक गहरा दार्शनिक प्रतीक होती है। क्यों, सही है ना? ये हमें सिखाती है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचने की तैयारी जरूर की जा सकती है। जैसे छतरी बारिश में या चिलचिलाती धूप में खुद उस धूप को सहती है, बारिश को सहती है, तूफानों को सहती है, लेकिन हमें सुरक्षित रखती है। ठीक वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में आने वाले संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मबल भी एक ढाल की तरह काम करता है, यानी एक छतरी की तरह काम करता है। तो आज का ये सफर हम शुरू करते हैं इसी छतरी के नाम। तो सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं ना? अरे बताइए मेरे साथ हैं भी कि नहीं?

देखिए ना, मुझे अकेले इस सुरीले सफर में निकलने से डर लगेगा। आप अगर मेरे साथ हैं तो ये सफर यूं ही आसान हो जाएगा, जैसे हर बार होता है। तो बताइए, लिखिए फटाफट कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं, है ना? और हाँ, अपनी छतरी लेना मत भूलिएगा। हो सकता है कहीं बारिश हो, कहीं चिलचिलाती धूप हो, कहीं बहुत बुरी गर्मी हो, तो हम परेशान न हो जाएं और ये सफर सुरीला ही बना रहे। इसलिए आज का ये सुरीला सफर हम शुरू करते हैं। हाँ, हमारी आज की इबारत, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने इबारत नहीं लिखी, ऐसा नहीं है। आज जो हमने इबारत लिखी है वो ये है कि दशकों तक मुख्यधारा में हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया, और इन गानों ने हमें छाता जरूर दिया, यानी हर फिल्मी गाने में ये छाता जरूर हमें मिला। और छतरी का ये उपयोग इसलिए किया गया कि फिल्मों में बारिश के दौरान नायक और नायिका एक छतरी के नीचे आकर उनके बीच का प्यार हमें दर्शाया जाता है, उनके बीच की केमिस्ट्री से हमको अवगत कराया जाता है, इसलिए इन छतरियों का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही डांस सीक्वेंस में रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करके वो जो सेट है उसे आकर्षक बनाया जाता है। और बहुत से गीतों में बारिश होते समय छतरियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जहां बारिश नहीं थी लेकिन नायक और नायिका के बीच छतरी थी। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं छतरियों के नाम, आपके नाम, इस गीत के साथ।

0: कह दो ना।
1: करो इंतजार आएगा वो दिन, बड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

0: बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज है।
1: जी तो सुरीला सफर में तो हमने बारिश की शुरुआत कर दी है। आपके शहर में बारिश हुई या नहीं आप हमें बताने वाले हैं, और कितना मजा आता है ना इस गीत को। जब आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि पूरे गाने में नायिका छतरी को खोलने नहीं देती है, और अंत में जब नायक छतरी खोलता है तो छतरी उड़ जाती है। छतरी उड़ गई, कितने मजे में वो कहते हैं उड़ जाने दे, है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ लिखा है छतरियों पर और इस रिमझिम बारिश पर। एक श्रोता लिखती है कि सदियों से रिमझिम गिरती बूंदें और हिंदी सिनेमा का रोमांस एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दरअसल बारिश में भीगते हुए जब एक ही छाते के नीचे नायक और नायिका करीब आते हैं तो ये सिनेमा के सबसे खूबसूरत और यादगार दृश्यों में से एक बन जाता है। टिप टिप गिरती बूंदों की धुन और छतरी की ओट में पनपता ये भीगा हुआ प्यार दर्शकों के दिलों में आज भी एक मीठी सी हलचल पैदा कर देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर मानसून और मोहब्बत का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। जब जब रुपहले पर्दे पर बादल गरजे हैं तब तब प्रेम की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं। इस भीगे हुए रूमानी माहौल को मुकम्मल बनाने में छतरी ने हमेशा एक बेहतरीन माध्यम का काम किया है। बारिश की बौछारों के बीच एक ही छतरी के नीचे सिमटे नायक नायिका के बीच की दूरियां पल भर में मिट जाती हैं। ये छोटी सी छतरी केवल पानी से बचाने का साधन नहीं बल्कि उनके दिलों को करीब लाने और सुलगते हुए जज्बातों को हवा देने का एक जादुई जरिया बन जाती है। पुराने दौर के श्वेत श्याम गानों से लेकर आज के रंगीन दौर तक छतरी के साये में पनपा ये रोमांस दर्शकों के दिलों को आज भी गुनगुनाता है। बहुत सुंदर। तो हम आपको बता दूं ये गाना फिल्म दो झूठ से हमने लिया था। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, एमजी हशमत के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि साउथ इंडिया विशेषकर केरल में बारिश से बचने के लिए छतरी के बजाय पारंपरिक बांस और ताड़ के पत्तों से बनी एक विशेष टोपी नुमा छतरी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ओलाकुड़ा कहा जाता है। बहुत सुंदर जानकारी, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात से छाती का और छाती से रोमांस का बड़ा घनीभूत रिश्ता है, खासकर हमारी हिंदी फिल्मों में। छाता प्रतीक है साथ चलने का, हिस्सेदारी का, देखभाल का, साथ ही सुरक्षा और छाया देने का भी। ये जीवन में प्रेम का प्रतीक भी है। एक छाता कैसे दो प्रेम करने वालों को नजदीक ला देता है, ये फिल्म श्री 420 के गाने में आप देख सकते हैं। पुराणों में कथा है कि परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते और छाता भेंट किए थे। तरह तरह के रंगीन छातों से लेकर काले छातों तक मन के पिटारे में छातों की बहुत सी यादें आज भी कैद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और छाते का रोमांस बेहद जादुई होता है। जहां तेज हवा के झोंके छाते को उड़ा ले जाते हैं और दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, तेज हवा में जब छाता उल्टा होता है तो पल भर के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। बारिश और छतरी का यह रिश्ता सिखाता है कि जब तक मौसम सुहाना है तब तक साथ खूबसूरत है, लेकिन जब तेज हवा जैसी मुश्किलें आती हैं तो साथ निभाने के लिए लचीला होना

बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है आप लोगों ने। मैं हमारे सभी श्रोताओं की उनकी लेखनी की बहुत कायल हूं। तो चलिए अगला गीत उन्हीं जज्बातों को लेकर सुनते हैं जहां सुलगते हुए जज्बात हैं और नायक और नायिका एक ही छतरी के नीचे थोड़ा सा करीब हैं।

लता मंगेशकर और मन्ना डे को आपने सुना। फिल्म का नाम था श्री 420। गीतकार शैलेंद्र थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, हमारे यहाँ तो सूर्यदेव अधिक तेज दिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, पर आज छतरी वाले गीतों की फुहारों से मन को ठंडक।

मिलेगी। एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात में छतरी टोकनी आदि से बचते बचते वो साइकिल पर वो टोकनी तेज बरसात, दोस्तों के साथ घूमना एक अलग ही आनंद होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पुणे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं हुई बारिश और अभी कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि जून में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है हमारे शहर में, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्रपति संभाजीनगर में अभी तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है। एक श्रोता ने लिखा है कि छतरी तो हर मौसम में काम आती है, चाहे गर्मी हो या बारिश, हसीनों को छतरी लेकर घूमने में ज्यादा मजा आता है, वो भी अलग तरह की। हमारे भोपाल में तो बारिश हो रही है और प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर दी है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम चेरापूंजी गए थे इतनी तेज बारिश, खूब हवा में हमारी छतरी भी उड़ गई थी। और एक श्रोता का लिखना है कि एक तरफ सुरीला सफर शुरू हो गया और बारिश के गीतों से, तो दूसरी तरफ तेज बारिश की शुरुआत भी हो गई है, दोनों एक साथ हो गए हैं, क्या कहने, क्या बात है। जी तो हमने जानना चाहा था कि आपके शहर में इस वक्त बारिश हो रही है या बारिश आसपास एक दो दिनों में हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, तो हमारे श्रोताओं ने हमें बताया है। और आप ये भी बताइए कि सुरीला सफर में आज आप हमारे साथ चल तो रहे हैं ना छतरी लेकर। तो अब आज के दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे कि छतरी से जुड़ी कोई बात है। वैसे तो आपने छतरी को लेकर बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत इबारत पेश की है, लेकिन आपके जीवन में छतरी से जुड़े कुछ किस्से, छतरी उड़ गई जैसा कुछ लोगों ने लिखा, छतरी ऊपर की ओर मुड़ जाती है कई बार, आप भीग जाते हैं, छतरी खो जाती है कई बार, आप भूल जाते हैं और तेज झमाझम बारिश में आपको भीगना पड़ता है, या ऐसा कोई किस्सा कि तेज बारिश थी, आप छतरी को लेकर साथ थे, छतरी के साथ ही, और चाय की टपरी आई और आप अचानक रुक गए और चाय पीने लगे, ऐसे किस्से भी आपकी जिंदगी में होंगे बहुत सारे, तो उन किस्सों को हमारे साथ साझा कीजिए ना। और हाँ, आपने किन किन गानों में छतरी को देखा है बताइएगा, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वहां बारिश ही हो रही हो लेकिन छतरी को दर्शाया गया है उन गानों में, चाहे थोड़ा सा कहीं एक कोने में आपने देखा होगा कि दूर बहुत सारी लड़कियां छतरियां लेती हुई जा रही हैं, इस तरह के भी दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आगे नायक नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं। तो कोई भी गाना जो आपको याद हो कम से कम शब्दों में हमें लिख भेजिए जहां छतरी का इस्तेमाल किया गया है, हम तो सुना ही नहीं। वैसे एक खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने आपको छतरी का क्लू दिया आपने सभी गाने लिख दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हमारे एक श्रोता के गाने तो हमारे से बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं कि आपकी और हमारी पसंद, आपकी और हमारी प्लेलिस्ट मिलने लगी है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर में, वही देखते हैं आगे मौसम कैसा है। गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब हैं काला बाजार में, शैलेंद्र की रचना है और सचिन देव बर्मन की धुन है।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश कम होने के आसार हैं और यदि होगी भी तो जलते तवे रूपी धरती पर पानी के छींटों के समान होगी। वैसे भी इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कुछ बारिश कम होने की भविष्यवाणी भी की गई है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप निराशा के बादल अपने आसपास मंडरा ले। आपको आशा रखनी है और निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर हर साल नई छतरी खरीदनी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म श्री 420 का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने अपनी दुकान में लगवा लिया था। क्या बात है।

एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर और नरगिस की वो आइकॉनिक छत्री प्यार हुआ इकरार हुआ वाले गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छत्री धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बसाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर के सभी श्रोता प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत तो अभी तक तप रहा है यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपके कुछ गीत हमारे गीतों से हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी पकड़कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य ऐसे गीत आज सुरीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छाती के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं का खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माई दृश्यों में छाता केवल बारिश से बचने का साधन नहीं बल्कि दो दिलों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है और बारिश में छाती के साथ फिल्माए गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया और बहुत सारी गीतों का जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नित नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत जोशी साहिबा अच्छा मैं की नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिल शांत बैठे संभव नहीं। यहाँ उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा की दिखावे की कोशिश करते हैं परंतु दोनों के दिल से एक ही आवाज निकलती है चलो इस प्रेम रस में सराबोर हो भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी संगीत रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं। छतरी रख लीजिएगा इस सफर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, एसडी बर्मन का संगीत है इस बार, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम है बाजी। हाँ, ये गाना भी आपकी प्लेलिस्ट में शामिल था, है ना? शामिल है ना?

टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप कितना प्यारा गीत है ना। और हमारे मन का जो आंगन है उसमें भी बरसात हो जाती है इस तरह के गीत सुनने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं, या आसपास हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए ना, अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके शहर कौन सा है और कहाँ बारिश हो रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा शहर में कल शाम को आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन शहर में कई जगह पेड़ गिर गए। अच्छा, इतनी तेज बारिश हुई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव कल रात बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले दिन रात भर बारिश हुई। इधर गोंदिया में बेटी के यहां 10-15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राजा महाराजाओं और संभ्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियां लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहां तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदे आई है, देखते हैं हमारे शहर में कब कब भीगता है इस तेज बारिश में। बिल्कुल भीगेगा, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहाँ बारिश हुई कि नहीं। और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है और कौन से गीत हैं वो जो आपको पसंद है उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और प्रणय का मोहक रिश्ता सदियों से चला आया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत इस खंड काव्य में भी ये नाता दिखाई देता है, क्या बात है। हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है जो युवा दिलों को बेसुध बना देता है और आत्मिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बधाइयां आपको बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफर प्रस्तुत कर रही हैं जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छतरी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी बल्कि और भी बढ़ जाएगी और उनके और आपके बजाए हुए गीत ज्यादा मेल खाएंगे। आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। देखिए, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपने जो बात लिखी है पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है चार लाइनों में वो इबारत ही है। इबारत का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये इसी तरह से सेट डिजाइन नहीं है कि इसी तरह का लिखा हुआ इबारत होता है। जो बात मैंने लिखी कि भई दशकों तक मुख्यधारा के हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश

साथ रोमांस किया गया है, तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी ताकि श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़े। तो ये कार्यक्रम सुरीला सफर ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफर के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं, एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी, मैं ये भी लिख सकती थी कि भाई आज कुछ ऐसे गीत है जहाँ इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपकी बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे ढंग से ढूंढ पाएं और आपको भी खुशी हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। अरे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश एक छतरी और रोमांस, ये तो अपने आप में ही एक मुकम्मल कविता है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारे बरस रही हो और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हो तो उस पल का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी नजदीकी एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रूमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है, जिसमें आज सुरीला सफर में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, आवाज मुकेश की और फिल्म का नाम है छलिया।

वैशाली, बिहार में प्रचंड गर्मी है, दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुरीले सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब से विविध भारती उद्घोषकों ने, जिसमें आप भी हैं, बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जिले सागर मध्य प्रदेश की में इस रैली में इस सीजन की पहली बारिश परसों हुई थी, इस समय तो तेज धूप निकली है, चलिए बारिश की शुरुआत तो हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर अजमेर में अभी तेज धूप है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल शहर में रिमझिम बारिश हो रही है, पर हमने आज गीत तो एक भी नहीं लिखा, जबकि गीतों से प्यार तो हमें ज्यादा है, पता है क्यों नहीं लिखे गीत, क्योंकि आज हम आपकी पसंद के गीत सुनने वाले हैं, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रानी की प्रतीक्षा है, अभी भी लू चल रही है, बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शहर में जल्द ही बारिश आए, लेकिन हाँ, अगर आप अभी गर्मी से परेशान हैं तो सुरीले सफर में निकल जाइए ना हमारे साथ, हम तो आपसे पूछ ही रहे कि सुरीले सफर में आप हमारे साथ हैं कि नहीं, छतरी को साथ, छतरी भी होनी चाहिए। चलिए तो सुरीले सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं। फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी, बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि ये बारिश के गाने हैं, हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जिनमें छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ गीत ऐसे भी हों इसमें जहाँ बारिश नहीं हो रही थी लेकिन छतरी थी। अभी अगला गीत आप सुनने वाले हैं उसमें कहीं आपको बारिश नजर नहीं आएगी, ना उन बोलों में गीतों के और न कहीं उस परिदृश्य में, लेकिन हाँ जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मा रही हैं, गा रही हैं, वहां पर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरी कविता की दो पंक्तियां बोल दीजिए आप प्लीज। क्या लिखा है आपने, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं। अच्छा, तो आप थोड़ी लंबी कविता लिखिए, वैसे तो आपने बहुत गहरी बात लिख दी है। अगर आप लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियां लिखिए ताकि हम उसको शामिल कर सके। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये वर्ष अलनीनो से प्रभावित है, ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे एक श्रोता और भी आगे लिख रहे हैं इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग के दंश को ये आशा और विश्वास ही तो झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा एक कारण है जिन्होंने प्रकृति का नाजायज फायदा उठाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात में मेरे शहर बड़ोदरा में बारिश को लेकर अभी तक मुंबई जैसा ही हाल है, मैं कल ही मुंबई आई हूं। अच्छा, एक श्रोता का लिखना है कि हमारे यहाँ सूरत में कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी छुट्टी पर चली गई, वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बारिश आएगी आपके शहर में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रखकर भूल आया हूं और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब कहीं भी छाता लेकर नहीं जाता। अरे तो बारिश आएगी, भीग जाएंगे, याद रखिए, अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला ना जाए। तार के ज्वाइंट में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है, अपने छाते हैं या अपनी पानी की बोतल है, टिफिन है, भूल जाते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुंचाने या विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था। तेज हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल यही जिंदगी है, और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढ लेना चाहिए। अगला गीत ऐसा ही है जहां बारिश नहीं हो रही है और इन बोलों में भी बारिश नहीं है लेकिन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का नाम है समाधि, लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत।

जी हमारे श्रोता लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी संगीत रस से भीगते हुए शानदार सफर कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम चाहते थे कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इस सफर में मेरे साथ आए हैं कि नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर धार MP में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और छतरी से याद आया कि पिछले वर्ष हमारी छतरी कोई ले गया था और आज ही नहीं लानी पड़ेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर से पुणे रेड बस ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस में ही भूल गया हूँ। भाई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही विविध भारती पर सुरीला सफर प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी हिरासत में ले लिया आग बरसाने के जुर्म में। क्या बात है, क्या बात है, जुर्म इतना बड़ा था सूर्य देवता का कि बादलों ने उन्हें अपनी ओट में ले ही लिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये गाना देवानंद और आशा पारिक के साथ फिल्माया गया है। बारिश नहीं है गाने में लेकिन बहुत सारी सहेलियां रंग बिरंगी छतरियां लेकर गाती हैं। पार्श्व में कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। तो चलिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप आई हैं, रिमझिम बारिश हमारे यहाँ चल रही है। ये कल तो गजब की बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा तेज हवा, आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज बरसात दो घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंडक हो गई, मजा आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, यानी राजस्थान हमीरगढ़ की बात आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है कहीं कहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में छतरी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से बचकर, क्योंकि हमारे यहाँ चटक धूप है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, छतरी लेकर तो हम साथ नहीं आए, हाँ संदेशों के साथ जरूर आए हैं, बातों और संदेशों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले गर्मियां शुरू होते ही छतरी बनाने वाले मोहल्ले में छतरी की रिपेयरिंग के लिए आते थे, पर अब वो दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और भीगने का मजा खूब आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाते की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छाव मिलेगी, बहुत सुंदर। वहीं लास्ट में अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर्ष उत्साह की छींटे झेलते झेलते सुरीला सफर कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत अंतिम गीत के रूप में आपके साथ।

फिल्म चालबाज का गीत था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ, आनंद बख्शी की बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब सुरीला सफर, हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं पड़ाव का। ये अब जो है सफर यहाँ हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़े, ठीक है, फिर चलेंगे एक सुरीले सफर।

फिल्म चालबाज का गीत था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ, आनंद बख्शी की भूल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब सुरीला सफर, हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं पड़ाव का। ये अब जो है सफर यहाँ हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़ें। ठीक है, फिर चलेंगे एक सुरीले सफर की और कभी और दिन। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

0: Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage. And in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेस्सी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर

0: आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
0: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
0: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
0: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18

0: परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: तो बता, छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी अपनी फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरा

0: से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सती परीक्षा। गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।

0: जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास के हैं और संगीत एस एन त्रिपाठी का है।

0: जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।

जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक केसर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। गायिका हैं लता मंगेशकर।

0: की सहेली
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और देखो बहुत सारी बातें भी हैं। तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती, की हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी।
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर आए, तो सब लोग हमारे साथी लोग सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की जी। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है जी, वो है आग में घी डालना।
2: घी डालना, तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं,
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें, और साथ ही आंगन के विषय में बताएं उनका आंगन घर का कैसा था,
2: कैसा था,
1: कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में।
2: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी बड़े प्यारे से विषय है आरती लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत
1: सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। काली पलक पिया तोरी वाला
1: बिल्कुल, और
0: गीत।
1: चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो
0: जी जी
1: अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं।
0: हाँ
1: वो
0: बताइए।
1: लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ ज़रूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके ज़रिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
0: तो बताइए।
1: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ ज़रूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीज़ें उपयोग करते ही हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
0: बिल्कुल आरती। और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही जीवन जो

0: भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
1: बिल्कुल, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं, तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माय फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपके वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं, वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE, जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ ही scw.dosje.gov.in, जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती, तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल, जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
1: जी बिल्कुल, और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567, और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
0: बिल्कुल, और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
1: जी।
0: तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
1: बिल्कुल, अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी आप चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे तरीके से।
0: और आरती देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
1: बिल्कुल, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके उसके लिए हम, अगर कोई घर में उस समय नहीं है, तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
0: बिल्कुल, और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर सिटीजन को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है, ताकि उम्र के इस पड़ाव

0: पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है इस चीज के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फोन भी चल गए हैं जिनके जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजीर, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमन जी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं?
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी
1: जी
0: को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने
0: जी
1: काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती, नहीं मालूम पड़ा हम
0: ये ना
1: बचाव में
0: हो।
1: कर रहे,
0: हाँ
1: खुद ही
0: बिल्कुल,
1: फंस गए उस चक्कर में।
0: ये ना हो कि बात, पहले झगड़े हो रही थी आपस में, बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घूंसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना
1: जी,
0: चाहिए।
1: और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है।
0: जी
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हो, ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है।
0: जी
1: अंग्रेजी में इसे एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत
0: जी
1: अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
0: बिल्कुल, और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
1: और आरती, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई, और उसको सुनकर के तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है, और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
0: बिल्कुल
1: काम
0: पड़ोसी
1: करता
0: हो,
1: है।
0: चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
1: बिल्कुल, और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता है नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, तो वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी

0: तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए। तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर
1: बिल्कुल,
0: रहे हो, है ना।
1: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो
0: बिल्कुल
1: अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखो भाई, इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपनी उसी बात पर आ गए कि
1: हाँ
0: भाई आग में घी डालने
1: घी
0: वाली
1: डालना,
0: बात पे।
1: तो क्या कह रहे हैं श्रोता?
0: हमारे साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज़्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है, बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में, 1 2 3 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में आइए लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होते हैं। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, कोई आके जब वो चीज़ को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है, नमक मिर्च लगा के,
0: जी
1: तो वो चीज़ें ना आग में घी डालने का काम करती हैं। और वो जो मनमुटाव है, जो मनभेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का

0: समय के मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित
1: बिल्कुल
0: रखे हैं,
1: बिल्कुल
0: जीवन में
1: ये
0: जहां हम जाओ
1: समझाने
0: वहीं
1: जी,
0: पर।

0: होने।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंट्रैक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया AI के लिए, जहां पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी,

0: ये जहाँ पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, अब हम कुछ गीत सुन लें।
1: जी

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करने
1: बिल्कुल
0: वाली है
1: आंगन
0: कि
1: की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूं चक्किया धरना, ये सारे जो काम होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुट जाता था।
1: बिल्कुल
0: यानी
1: हर मौसम समझ लीजिए हमारे
0: जी,
1: आंगन में उतरता था।
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो
1: सब
0: पंगत में
1: आंगन
0: जो खाना खाया
1: बिल्कुल।
0: जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसके उस पर बैठकर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग
1: बिल्कुल।
0: मजा है। और
1: और जी
0: गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या कहने
1: हाँ,
0: वाली
1: मैं ही
0: थी?
1: कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो जो असली मजा होता था ना, वो आंगन में आता था। क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप
0: क्या
1: छप,
0: बात
1: इतना
0: है।
1: मजे आते थे कि
0: और तुम्हें
1: मतलब।
0: याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था,
1: जी
0: और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे
1: बिल्कुल।
0: कि पानी भर
1: ये
0: जाए।
1: मुझे मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी,
0: सभी की
1: सभी
0: है
1: के घर आंगन, जिनके जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहां पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीजें भी करना, वहां पे इंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का,
0: बिल्कुल।
1: वो भी करते थे।
0: और देखो ना, हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था।

0: था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वही नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था। और
1: बिल्कुल
0: आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर के
1: बिल्कुल।
0: करते थे, तो बहुत मजा आता था
1: और
0: उनकी
1: रात
0: यादों में।
1: में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते हैं, अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे। तो बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन
0: बिल्कुल,
1: से।
0: और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, और जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे
1: बिल्कुल
0: हवा, वो भी बहुत यादगार है। और
1: बिल्कुल
0: हमारे साथी क्या लिखते
1: बिल्कुल।
0: हैं
1: हमारे
0: बताओ।
1: एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में। बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे, गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहां बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहां माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहां बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते, रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहां सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना
1: बिल्कुल
0: सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी, इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यही से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूं कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ। हमारी चार बहनों और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जब ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर ये
1: जी
0: गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था रात
1: बिल्कुल।
0: में।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थीं और अपने सुख दुख की बातें कहती थीं। यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे। ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसा के चौबारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी वहीं रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की
1: बिल्कुल
0: जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता
1: जी।
0: लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं, आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन

0: हुआ करते थे। अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है, जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आराम दायक बना रहता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है। वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी। सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे
1: बिल्कुल।
0: और शाम का खाना तो वहीं पे बनता था, किसी किसी किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितने किया करते थे,
1: बिल्कुल।
0: शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों
0: पढ़ाई
1: के
0: कर रहे
1: समझ
0: हैं।
1: लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते
0: और वो
1: हैं।
0: याद है जब चावल बीनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो
1: बिल्कुल
0: चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहां सुबह शाम दिया जलाया जाता था, और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे, और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे।

0: थे। और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे, आई स्पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी है, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे। तो उसका
1: बिल्कुल।
0: भी एक अपना मजा है जो आज भी
1: और
0: यादों में बना हुआ है,
1: हर मौसम
0: हर
1: का, चाहे
0: मौसम
1: गर्मी
0: का।
1: हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना,
0: अरे वाह,
1: वो जो
0: क्या
1: सूरज की
0: बात है।
1: रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी, तो सबका यह होता था कि भाई जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहां जहां धूप जा रही है ना,
1: जी
0: वहां वहां पे कुर्सियां भी जा रही है, चारपाई भी
1: बिल्कुल
0: जा रही है, और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ। ये बहुत अच्छा
1: बिल्कुल
0: टाइम पास था कि
1: बिल्कुल
0: उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना,
1: जी।
0: यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो वो भी काट के, फिर सब बांध के
1: मतलब
0: लेके
1: जो
0: हर
1: भी
0: काम
1: चीजें
0: आंगन
1: आपको,
0: में।
1: जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठ के करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे
0: आनंद उठाते हैं गीत का।
1: बिल्कुल एक गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में
1: बिल्कुल
0: गुजार लिया,
1: इस
0: फूलों को
1: आंगन
0: भी
1: में हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी
0: अब हमें चलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: सभी को
1: और
0: मंजरी वर्मा और
1: आतिश श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: जानी मानी शायर, एक जाने माने गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क।
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर सा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
2: बेखबर
3: दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
3: जी।
4: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
3: ओहो,
4: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेतीबाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
3: जी।
4: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
3: जी,
4: ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा।

0: जी
1: ये 1984 1984 का जमाना था।
0: कितने बड़े थे आप?
1: मैं 71 में पैदा हुआ।
0: ओ, तब तो बहुत छोटे
1: हाँ
0: थे।
1: हाँ छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है। तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
0: काम क्या कर रहे थे? अच्छा
1: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में, जो पान में सुपारी खाई
0: जी
1: जाती
0: जी
1: है
0: जी
1: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज़्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
0: जी
1: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था,
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ। और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
0: जी जी जी
1: या उसको समझने में, या
0: जी
1: उसके महसूस करने में।
0: हाँ,
1: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब
0: रेडियो
1: बस
0: का स्विच ऑन कर
1: हाँ,
0: दिया।
1: कर दिया ऑन। और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे काटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गज़ल
0: बज रही
1: बज
0: थी।
1: रही थी। और वो गज़ल थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं,
0: क्या बात।
1: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं। बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गज़ल कोई गा रहा था, और इस गज़ल के साथ साथ मेरी गज़ल शुरू हो गई,
0: ओ
1: और सेम मीटर में, है ना। अब वो गज़ल तो मैंने ज़ाये कर दी, मुझे याद नहीं है। उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मकता कहते हैं,
0: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे।
1: मैं हाँ,
0: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने
1: मेरे
0: लगे।
1: अंदर का शायर जो
0: जी
1: है
0: जी
1: मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ।
0: जी और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो। विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था,
1: अच्छा
0: तो वहां पर गजलों का प्रोग्राम
1: हाँ,
0: हुआ
1: तो वो
0: करता
1: हाँ
0: था।
1: तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था। मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा। तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी
0: जी
1: उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस
0: जी
1: तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती। वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है। तो
0: तो वो गजल याद है?
1: गजल तो याद नहीं है क्योंकि मैंने वो ज़ाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा
0: खून
1: जिस्म
0: से
1: ये शकील अपना।
0: क्या बात है।
1: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
0: क्या बात है,
1: हाँ
0: वाह वाह, क्या बात है। तो
1: बिल्कुल
0: मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की। तो मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से लिया आपने शायरी की।
1: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
0: क्या बात है।
1: जी हाँ
0: शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है। तो यहां पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाए, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है
1: जी
0: गानों
1: हाँ
0: की,
1: जी हाँ जी
0: उसकी
1: हाँ
0: चर्चा भी हम आगे करेंगे।
1: हाँ वो सुना दें आप। मदहोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
0: क्या बात है,
1: गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
0: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मदहोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है जख्म भरते ही।
0: जी
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
0: जी जी
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसेटिव प्राणी है।
0: जी
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था।

0: रहा था।
1: जी
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे।

0: रहा था।
1: जी
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे। कहते हैं वो इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का
1: जी,
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है
1: उस...
0: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है।

0: कहते हैं वो
1: जी
0: इंग्लिश में स्किजोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ,
1: जी
0: जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का,
1: जी
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है,
1: उस
0: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना, वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है।
1: से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं, और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं नानी की जबान से सुनी हुई, वो कहानियाँ नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए
0: नानी की मोहब्बत है
1: बताइए कोई किस्सा
0: यार
1: बताइए नानी
0: मैं
1: का।
0: आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है, ओह
0: हाँ, बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है, माँ के साथ एकाध वाकया जरूर याद है लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस
1: ओह
0: जमाने में टीबी लाइलाज था,
1: जी जी
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती
1: क्या बात
0: थी
1: है

तारीफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी

0: क्या बात है।
1: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्तीन का हो जाए।
0: वाह।
1: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया, अचानक
0: ओहो,
1: इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया इसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
0: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
1: अब मिदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
0: जी जी
1: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि
0: जी
1: जा
0: जी
1: दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी
0: बहुत
1: जिंदगी का एक
0: यादगार रहा।
1: यादगार और पहला बड़ा मुशायरा था।
0: जी जी
1: उससे पहले मैंने

0: वो सितारा जमीन पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही कहो हो जाए।
1: क्या बात है, बहुत
0: अब निदा साहब
1: बढ़िया
0: ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी जी
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे
1: जी
0: दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी
1: बहुत
0: जिंदगी का एक
1: यादगार रहा
0: यादगार और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी
0: उससे पहले मैंने

0: और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात

0: ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फ़ोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है। फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे, और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए। उसका म्यूजिक, मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार फिर बताइए।
0: जिद,
1: जिद फिल्म
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा।

तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ हैं रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू, है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया,

फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है। इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बज़ाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी।

तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ हैं रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी। जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी। ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने, ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी, कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने गाई।

0: इनकी हिमाकत को समझो, मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।
1: कहा आपका ये बजा ही सही,

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बहलता है।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: Kublai Pibro, Kani Tok Akashwini Jua, Hapok Studio Nega Janmit, De Mga Raymond Rtiang, Chirup Waka, Lisana, Katpo. Sajisin Pidyang Senyap Hai Piki, Perlok Chika Station Giyong E, Hei Tok Waka Kisan Wani Program, Nega Program, Hei Tok Waki Lok Kiwrem. Kawajuk Wans Pikli Ek Janmit, Hei Pon Rusan Pau Minit, Hadu Nyaw Ar Pau Minit, Lain Nok Janmit Yong Kesengibiba, Naga Akashwini Jua, Ha Uchispa Ibi Ponyubi, Megahertz, FM Band.
1: Weleng ba ni ke program ye phyo chi bon YouTube hey top gi kamrap kamriang gi yong phi kam jo le gi rijing ri ku em hapo ka district gi yong e we gi ni ke program de rap an ra chi de ministry of agriculture chiro bi kra kam lang ga farmers welfare ka sarkar india tere mon gi mai program em pan apus nyam tu ge janmet
0: te hey to wa ka kisan oni program yom tu ke janmet em pus nyaw chi ki prolog ye ka dialogue ne ga ya phlujing mot ha produ doctor p sumer woman o animal husbandry and veterinary officer chiru wa doctor m kandia woman le animal husbandry and veterinary officer u ye kalam ge hetrong ka phang I ris nyang chiru wa ipsan dakha hakinan tolisa kini to ka program ko pus nyaw tu ke janmet apo studio hey to wa ka kisan wani
2: ari sun to
3: मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी सौतन को
2: किसको
3: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं हुँ?
2: अच्छा ये बात है
3: हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या
2: अब तो झट से बात हो जाती है
3: ऐसा क्या
4: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया
3: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म
2: हाँ
3: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर
1: Terdapat pors dalam negeri program dari abi pelujur muda perlu Dr P Sumer, woman kamu animal husbandry and veterinary officer, ciri bo Dr M Kandia, woman lew animal husbandry and veterinary officer, I pelujur muda langgi hajarong kepang, I ris ni yang ciri bo ipsan deka hanan.
6: Hei ni por, ngah u Dr P Sumer, EH and veterinary officer, wa u Dr M Kandia, EH and veterinary officer, hagan ni ke program kisan bani. Uyaklam I cepang ke topik, dan ini kebenta kewa em kamha, di benta kinong rep, kinong rijengri, kete ke topik to, hektin pereng ke integrated piggery com fish farming. Lebetai hektin benar, kau mod iris nyang, cirup wa ipsandaka hanan.
7: Tarisnya bi ka kamu angun Dr. Sumerman to, yang bahagini integrated pig farming com fish farming. To kiyi ka kata integrated com fish farming. Te kiyi ki kijing emkam. Hei por wasdang ya kani kaya jen rijing ri de lang web sandaka. Hiyi ijing mentoy uyok ki nong rijing ri de veris nyang cirum web sandaka hanan. Ni tewan kiyi ki kibentai ki wahap hi ulek lene u pikir bahai hei tok wakani kekam. Te kijing eh lene ki challenges ki we chem Kita ye ucam hari integrated farming, com fish farming. Tapi ya ini orang uya kelami ini por hari ni program kisan wani.
6: Tapi kiri kita integrated piggery com fish farming. Kita integrated piggery com fish farming. Tok kui nak kira com rejingri, komen toipah, komen sustainable.

0: Hello, listeners. Thanks for being with us. Now, join us in our effort to serve you better. Become an honorary mentor with RAISE, Radio Audience Interactive Survey and Evaluation, our exclusive mobile app where you can rate announcers, review programs, and share your feedback. Just click the link on our official Facebook page and register. Your active feedback will help us improve and keep up the legacy of Akashvani. So, don't just listen, lead the change with RAISE mobile app.
1: नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े RAISE रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, RAISE मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
2: Kublishibunab radio emlang piwi isnok tilang piwi he perchang yong e wo chakri phi rabha yipiman ki honorary mentor dilang wo RAISE ne research audience interactive survey and evaluation lengba ki ni go mobile apps yong e yipiu e jingmon heyeto wa irukom e program ki announcer kamjule isyang su wi mun toy yong ki program yipule ye ni dei wo khnyan phi ha ka link na facebook nei te register ejimut yong phi yurap ko yi open ba wei wo ra ye na mo ba ka akashwani kam te haman do kam gi nong ap hidan hanrei ya khamat he wo wan ra yi kala chirup bok RAISE mobile app

0: नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
1: कुबले शिबुना रेडियो एम लंग पीवी इस नक्ति लंग पीवी हे परचांग योंग ए वो चक्री भी रब हा ये पीवमन की अनरुरी मेंटर दे लंग वक रेज

0: तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
1: कुबले शिबोना आप रेडियो एम लंग पीवी इस नौकरी लंग पीवी है परचंग योंग ए वो चक्री भी रबा ये भी मन की अनरुरी मेंटर दे लंग वक रेस ने रिसर्च ऑडियंस इंटरएक्टिव सर्वे एंड इवैल्यूएशन लंबा के निगो मोबाइल एप्स योंग ए ये भी ए जिगमन है ये तो वा इरुकम ए प्रोग्राम के अनाउंसर कम जोले इस यंग सुगु इमन तो योंग की प्रोग्राम ये पुले ये नि दे वक न्यान पे हाक लिंक न फेसबुक नेक ते रजिस्टर ए जिमुत योंग पे युराप को ये ओपन भा वे वो रा ये ना मो भा का आकाशवनी कम ते हमन दो कम की नंग अप हिडन हनरे या खमत हे वो वन रा ये कला चिरुप बक रेस मोबाइल ऐप।

0: listeners. Thanks for being with us. Now, join us in our effort to serve you better. Become an honorary mentor.
1: आप आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
2: कुबले शिबुना आप रेडियो एम लंग पीवी इस नौकरी लंग पीवी है परचंग योंग ए वो चक्री भी रब हा ये भी उमान की अनरुरी मेंटर Daylang work race ni research audience interactive survey and evaluation. Lengbak ni ko mobile apps yong I. EPUA jingmon hayato wa irukom a program ki announcer. Kam jule is yang suwe imentoy yong ki program. EPUA ye ni day work nyan pi hak link na Facebook nek te register. E jingmon yong pi yurap ko I. Open pa wai wau ra ye na mo pa ka akash wani. Kam te hamando kam ki nong ap hidan. Henry, ya khamat hewa wanra ikanlah curup buka race mobile app.

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी

0: वाला एक एलपीजी वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की और बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाज

0: विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges, from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the centre of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the country had so far seen around 43% less rainfall and that the monsoon was expected to remain weak in July too.
2: Overall, अभी तक
3: ओवरऑल रेनफॉल हैज बीन 43% बिलो नॉर्मल सो फार एंड अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट कंडीशंस आर

0: service, dedication and perseverance, regardless of fame or recognition. Citizens across the country now actively nominate deserving individuals through an open nomination process. This democratization has helped bring national attention to grassroots innovators, tribal artists, environmental champions, educators, healthcare workers, and social reformers who may otherwise have remained unknown outside their communities. Among the recipients this year is Professor Shafi Shauk from Jammu and Kashmir, who has been awarded the Padma Shri for his outstanding contribution to literature and education. A distinguished scholar, linguist, poet, and author, Professor Shauk has dedicated decades to preserving and promoting the Kashmiri language. Through his academic work, writings, and literary contributions, he has helped strengthen the cultural and linguistic heritage of Kashmir. His recognition reflects the importance of preserving India's rich diversity of languages and traditions. Speaking exclusively to Akashwani, this is what he said.
1: Kashmiri zaban ka pehla grammar likha jab main college mein tha. College mein hi maine pehli baar ek journal bhi start kiya. Khud hi apne haath se kalam se likhta tha. Uska naam tha Ash. और फिर लाल चौक में आकर शुपियान से अननाक अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता तो उससे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट शुमारा छपता लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर मेरी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लोगों से हुई उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं तो उस को कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए तो उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया और जब मैं इंग्लिश में से मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया पहला रेगुलर कश्मीरी टीचर हालांकि कश्मीरी में मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी लेकिन मेरी किताबें थीं
0: Another inspiring recipient is Nilesh Manlewala from Gujarat, who has received the Padma Shri for his remarkable contribution to organ donation awareness. For over two decades, Manlewala has worked tirelessly to promote organ donation and encourage families to support life-saving transplants. His efforts have played a major role in facilitating thousands of organ donations and helping patients receive a second chance at life. His work stands as a powerful example of how one individual's commitment can transform an entire social movement. Let's listen to what he said, speaking exclusively to Akashwani News.
2: ये सबसे बड़ा अवार्ड था आज भी मैं यही कहता हूँ आज पद्मश्री आने के बाद में भी मैंने यही कहा कि आज भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है ये सम्मान है जिन ब्रेंडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रेंडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है इन सभी का सम्मान है आप सोचो वो निर्णय नहीं लिया होता वो बीज ही नहीं बोया होता तो क्या आज वो बीज वट वृक्ष बन पाता मैं हमेशा कहता हूं जो बीज बोया गया जो नींव रखी गई वो इतनी मजबूत नींव थी जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई आज मजबूत है जो बीज बोया बीज आज वटवृक्ष बना और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है तो हमारे लिए तो जी देश में जितने भी लोग ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं जितने भी संस्थाएं ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं ये सभी का सम्मान है मैं ऐसा ही मानता हूँ
0: The Padma Awards 2026 also honor excellence in science, technology and innovation. One of the notable recipients is Dr. V. Kamakoti, an eminent computer scientist and academician. He is currently serving as the director of Indian Institute of Technology, Madras. Through his contributions to indigenous computing technologies, digital innovation and education, Dr. Kamakoti has played a significant role in strengthening India's technological capabilities. His work reflects the growing importance of scientific innovation in achieving the vision of an Atmanirbhar Bharat. This is what he said in an exclusive interview to Akashwani.
3: My academic journey started. I joined a school called Vidya Bharati, a very cool school. I was very much deeply into cricket. Then I took violin. Then I started learning violin.